0: चना की चांदी में चंदू के चौथरे पे चाचा ने चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चटनी चटाई किसने चटाई?
1: चाचा ने।
0: किसको चटाई?
1: चाची को।
2: अरे पर चाची है कहाँ?
0: तो ले आओ ना चाचा।

बेगैरत इंसान हो जिसे बातें बनाने के सिवा कुछ नहीं आता। कुमार, तुम्हारा कोई कैरेक्टर है ना? ईमान ना वफादारी।

0: यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला

0: बाहर चौकी किधर है?
1: ऊपर वाले कमरे में।
2: सीता डोली में बैठ के सिर्फ राम के घर जाएगी, वरना जहर खा के मर जाएगी। मैं जा रही हूँ राम, मेरे बाद मेरी दीवी निशानी हमेशा याद रखना। आप?
3: One and two and I love you, I love you, I love you।
0: अरे मरी क्या? अरे जल्दी कर, कन्या ने मोकल व कैच।
4: हम तैयार तो होने।
0: अरे जल्दी कर पन।
2: पंडित जी सीता को बुला रहे हैं।
1: अच्छे वाले क्या आता हूँ? अच्छे से।
0: अरे मरी क्या? छोकरी का बाप आ रहा है। अरे जल्दी कर।
5: इनका काम तो हो गया, अब क्या करूं?
0: अबे छोकरी का बाप आ रहा है, उसके हाथ में थमा देना। हाँ, छुप जा जल्दी। चलो चलो जल्दी करो, मुझे छुपा ले तेरा बाप आ रहा है।
1: अंकल हमारी बेटी को आशीर्वाद दे दिया।
6: अरे ऐसा दिया आशीर्वाद कि तेरा छोकरी का हो गया घर आबाद और तेरा घर सदा के लिए बर्बाद।
1: जी?
6: अरे मेरा मतलब है तेरा दुश्मन का घर सदा के लिए बर्बाद। अच्छा अपन अभी जाता है, लेकिन तू अपन को अक्का जिंदगी याद करेगा, उठता बैठता सोता जागता मेरे को याद करेगा। अरे इसको भी अपना छोकरी समझ कर आशीर्वाद देनी।
1: हाँ जरूर जरूर, जीती रहो बेटी सदा सुखी रहो। अंकल
7: 90.3 FM and on the web at wamf.org. This is WAMF LP, New Orleans.
8: Whatever's going on in the rest of the world, if it's wars or kidnappings or crimes, this is a peaceful night with a grateful day.
9: And a big hello to all you folks out there in radio listening land.
10: You're listening to an exclusive live concert by the Grateful Dead.
8: Without any further ado, from Marin County, the great, great, grateful dead.
9: For all you folks out in radio land, we are the Grateful Dead.
11: If you're listening from home and you buy the radio set, get a bit nearer.
12: Originally a jug band in 1964.
8: The oldest juveniles in the state of California.
9: If you are staying at home next to your radio, you're hearing the music faster than you are if you're in the hall.
13: For you hapless radio listeners out there, this is what's known as dead air.
14: We're broadcasting live from the Winterland, a Grateful Dead performance.
15: Live remote from the Carousel Ballroom of the Grateful Dead.
8: We know what you know about these people. They're not the best at what they do. They're the only ones who do what they do. The Grateful Dead, please.
13: For you folks out there in Radio Land, a big hello to y'all, and this is what's known as Dead Air.